थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

प्रार्थनायां वयं श्रीगणेशं श्रीसरस्वतीदेवीं गुरूणां च नमस्कारं कृतवन्तः। इदानीम् अभ्याससमयः, आगच्छन्तु। अद्य सूर्यनमस्कारविषये पठामः। संस्कृतशब्दाः भवन्ति नमः, पुनः प्रश्नवाचकशब्दाः तु कदा, नूतनः शब्दः किमर्थम्। आइए आज सूर्य नमस्कार विषय बात करेंगे। आज का एक नया शब्द है नमः, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द होगा किमर्थम्। आप कदा का भी अभ्यास करेंगे। सुमंतः बालकः, सः प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति। सुमंत बालक है, वह सुबह में 5 बजे उठता है। सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारं करोति। सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठं अपि करोति। सुमंतः उत्तमः बालकः। सुमंत एक बालक है। सः सुबह में 5 बजे उठता है। सार्ध षड्वादने यानी 6:30 बजे सूर्य नमस्कार करता है। वह रोज सूर्य नमस्कार करता है। वह रोज गृहपाठ भी करता है। सुमंत अच्छा लड़का है। तरी एकैकं वाक्यं श्रुण्मः, प्रश्नं पृच्छामः, उत्तरं वदामः। यदा अहम् उत्तरं वदामि तदा भवन्तः अपि उत्तरं वदन्तु। सुमंतः प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठति। सुमंतः कदा उत्तिष्ठति? सुमंतः प्रातःकाले 5 वादने।

ने उत्तिष्ठति। सुमन्तः सार्ध षड्वादने सूर्यनमस्कारं करोति। सुमन्तः कदा सूर्यनमस्कारं करोति? सुमन्तः सार्ध षड्वादने सूर्यनमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठं करोति। सः प्रतिदिनं सूर्यनमस्कारं करोति। सः कदा सूर्यनमस्कारं करोति? सः प्रतिदिनं सूर्यनमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठम् अपि करोति। सः गृहपाठं कदा करोति? सः प्रतिदिनं गृहपाठं करोति। सुमन्तः उत्तमः बालकः। सुमन्त बहुत अच्छा लड़का है। सुमन्तः पञ्चवादने उत्तिष्ठति। सुमन्तः सूर्यनमस्कारं करोति। तर्हि प्रथमं सुमन्तः उत्तिष्ठति, अनन्तरं सूर्यनमस्कारं करोति। सः संस्कृत मन्त्रं वदति। सुमन्तः प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति, सार्ध षड्वादने सूर्यनमस्कारं करोति। सूर्यनमस्कारसमये सः सूर्यं नमति, बीजमन्त्रं वदति, अनन्तरं सूर्यनमस्कारं करोति। तो क्या क्या हुआ? सुमन्त 5 बजे उठता है, 6:30 बजे सूर्य नमस्कार करता है। पहले वह सूर्य को नमन करता है, फिर बीज मंत्र, सूर्य नमस्कार का बीज मंत्र कहता है, और उसके बाद सूर्य नमस्कार करता है, यानी आसन करता है। सूर्य नमस्कार एवं भवति, बीज मंत्र अस्ति। सूर्य के 12 मंत्र ऐसे हैं, बीज मंत्र के साथ।

0: नमः। तर्हि ये है बीजमंत्र, सूर्य बीजमंत्र। सूर्य देवतायाः अनेकानि नामानि सन्ति। सूर्य देवता के बहुत सारे नाम है, यथा मित्रः, रविः, सूर्यः, और भी है, बाद में सुनेंगे। सूर्य देवतायाः अनेकानि नामानि भवन्ति, यथा मित्रः, रविः, सूर्यः इत्यादयः। भवन्तः सूर्य नमस्कारं कुर्वन्ति किम्? आम्, मैंने सुना आम्, बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? उत्तरं भवति आरोग्यार्थम्। तो अर्थ क्या हुआ? सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? सूर्य नमस्कार किस लिए? उत्तर होगा आरोग्य के लिए। कैसा बोलेंगे संस्कृत में? आरोग्यार्थम्। सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? आरोग्यार्थम्। और भी उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता स्तुत्यर्थम्, सूर्य देवता के स्तुति के लिए। सूर्य देवता प्रीत्यर्थम्, सूर्य देवता प्रसन्न हो इसलिए। तो बोलिए, प्रश्न अस्ति, सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? आरोग्यार्थम्। सूर्य देवता स्तुत्यर्थम्, सूर्य देवता प्रीत्यर्थम्। सूर्यः मित्रः, सः विश्वस्य मित्रः, सः प्रकाशं ददाति। सूर्य का एक नाम है मित्र, वह विश्व का मित्र है, वह प्रकाश देता है। वयं वदामः सूर्याय नमः, मित्राय नमः। यदा सुमन्तः सूर्यं नमति तदा वदति सूर्याय नमः। जब सुमन्त सूर्य को नमस्कार करता है तब बोलता है सूर्याय नमः। तो सुनिए, अभ्यास होता है ऐसे। सूर्यः अस्ति, सूर्याय नमः। गणेशः अस्ति, गणेशाय नमः। दुर्गा अस्ति, दुर्गायै नमः। सरस्वती अस्ति, सरस्वत्यै नमः। आज का प्रश्न है, सूर्य नमस्कार आप क्यों करते हैं? अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्री रामरक्षा स्तोत्रस्य श्लोक संख्या 11-15 पठामः।
1: श्री गणेशाय नमः,
2: श्री गणेशाय नमः।
1: पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः,
2: चारिणश्छद्मचारिणः।
1: न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। रामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वास्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति
2: जगज्जेत्रैकमन्त्रेण
1: रामनाम्नाभिरक्षितम्। यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदम्
2: यो रामकवचं स्मरेत्
1: अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः।
0: इस सप्ताह में हम इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे। अगले सप्ताह में हम श्लोक संख्या 16 से 22 तक के श्लोक बोल के उनका अभ्यास करेंगे। आज संभाषण का 12वां दिन चल रहा है। प्रश्न पूछने की कोशिश जारी रखिए। अब तक हमने 4 प्रश्नवाचक शब्द सीखे हैं। वो क्या है? किम, कुत्र, कति, कदा, और आज का नया शब्द था किमर्थम। इन प्रश्नों का उपयोग करके प्रश्न जरूर करें। अभ्यास अपने आप हो जाएगा। इदानीं शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: दिव्यता का महत्व. स्वर सम्राज्ञी लताजी के सुरीले गीत हो या लियोनार्डो विंची द्वारा उकेरी गई मोनालिसा की जीवंत तस्वीर, दोनों ही हृदय में दिव्यता का एहसास जगाते हैं. कलाकारों की कृतियों में दिव्यता की खुशबू जो भरी होती है. साधारण से कार्य को जब दिव्यता का स्पर्श मिलता है तो कर्म कला का रूप ले लेता है. जिंदगी को रूहानी रंगों से साराबोर करने वाला महान अलौकिक गुण है दिव्यता. दिव्यता देवलोक का गौरव और देवी देवताओं का सम्मान तथा इंसान का आत्मिक सौंदर्य है. दिव्यता अर्थात साधारण से साधारण काम में भी गुण विशेष भरकर उसमें नावीन्यता लाना. लौकिक जगत से ऊपर उठकर कार्य व्यवहार में गुणवत्ता भरना. मन वाणी कर्म में मूल्यों की धारणा से व्यक्तित्व को अनोखापन देना और उसे शुद्धता के आधार पर भव्य बनाना भी दिव्यता ही है. दीपावली के रंगोली के रंग, इत्र की सुगंध, पुष्पों की साज सज्जा, ये सभी मन को कितनी दिव्य अनुभूति कराते हैं. अदाकारों की अलौकिक अदाएं हो या गीतकार और संगीतकारों की फनकार, ये सभी दिव्यता के कारण ही अपना जादुई जलवा दिखाते हैं. बिना दिव्यता के कला और कलाकार का कोई अस्तित्व नहीं. माँ की ममता, पिता का प्यार, भाई बहन का पवित्र प्रेम इत्यादि इंसान को ईश्वर से मिले दिव्य उपहार ही है. इसी प्रकार प्रकृति में भी दिव्यता का दीदार नित्यदिन होता रहता है. जैसे रंग बिरंगे बादल व सावन में सप्तरंगी इंद्रधनुष, ये सभी प्राकृतिक छटाएं बड़ी दिव्य होती है और इसीलिए तो मन को लुभाते भी है. दिव्यता चाहे पुष्पों में हो, आसमा की रंग बिरंगी बादलों की घटाओं में हो या चित्रकार की रंगीली छटाओं में हो, अंतर आत्मा को आनंद रस से भर देते हैं. मिट्टी से पाया सोना जब सुंदर गहना बन जाता है तो वो अपनी दिव्य सौंदर्य से रूप लावण्य में चार चांद लगा देता है. साधारण सी दिखने वाली माटी जब मूर्ति का रूप लेती है तो दिव्य स्वरूप के कारण पूजनीय बन जाती है. व्यक्ति को आसमा की ऊंचाई और गौरव के गौरी शिखर पर पहुंचाने वाला महान गुण है दिव्यता. अतः दिव्यता को अपनाइए और जीवन में भव्यता लाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है, उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
2: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
5: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अपितु हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
2: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फेन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
2: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
7: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 एफएम के एल ई कनसु।
8: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಎಂಪವರ್ 365 ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666. ಗಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। उसी के साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहां इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असिस्मेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी है, जो भारत के लिए स्वदेशी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर, कि फोन एडिक्शन कैसे होता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
1: तो मैम, मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक बिहेवियर एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन रिस्क पे है, तो जो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हम इनको बार बार यूज करें। वो बना ही इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइन्फोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है, हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसे हमें एकदम आनंद मिलता है, जो कि बाकी चीज़ों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट हैं, कोई नवयुवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं, या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, तो उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं या उसे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो तुरंत ही हर आधे मिनट में उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह के किए गए हैं कि उनको एकदम खुशी तुरंत ही मिल जाए। और जितनी बार उनको खुशी मिलती है, उतनी बार ये उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे हमें यूज करने से आनंद मिलता है। अच्छा। तो एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है, जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, वो अडिक्ट होने के लिए ही बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा।
0: बाप रे।
1: क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
0: करेक्ट।
1: और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वल्नरेबिलिटी रहती है, और इसको हमें तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं, और आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
0: एग्जैक्टली।
1: उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। कोई भी और काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं, तो फिर आपका हाथ वही मोबाइल फोन में जाएगा, उसे आप ओपन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्री ऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल।
0: अच्छा।
1: विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं, तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है, या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो, या किसी ने फोन आपसे घर में ले लिया हो। तो अगर ये हो रहा है, तो इसका दूसरा लक्षण है, इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम।
0: अच्छा।
1: और आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस, ये तीसरा लक्षण टॉलरेंस का मतलब होता है, पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज करने में, 10 मिनट यूज करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले वो जो चीज़ 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज़ करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है पहले आधा घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट से शुरू होता है धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन, वो धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है। एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। तो तीसरा लक्षण इसको बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट 1 मिनट के बाद, बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूं मैं। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप जो है आपकी इम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उन पे असर पड़ रहा है। जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसमें से कुछ देखा आपने, वो चीज़ पसंद आ गई, अब उसे ख़रीदना है तो उसमें। तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, ये होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो 3-4 घंटे रात हो जाता है, 1 बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पांचवा। छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है। अब आपका मन नहीं करता लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जैसे मैंने पहला बताया लोगों से बातचीत करें, क्या कोई फंक्शन है घर में वह जाएं, या किसी ने आपको कम्युनिटी में फंक्शन में बुलाया हुआ है अपने कॉलोनी में, वहाँ जाने का मन नहीं करता क्योंकि वो अब रुचि लायक नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद वो तो देंगे नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया वो एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बिताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब ख़राब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते हैं और उस टाइम पे फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है में परिवर्तन आ गया।
0: अच्छा।
1: और अपने आप मोबाइल फ़ोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है कि जब आप कितना, अगर कोई पूछे आप कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये 8 लक्षण हैं। इन 8 लक्षण में से अगर कोई भी 5 लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
0: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से, जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो 90% लोग अभी मोबाइल से अडिक्ट हो चुके हैं और वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है अभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर अभी ये जो सभी आपने लक्षण बताए या फिर जो एप्लीकेशंस है जो इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि लोगों को उस आदत लगे, उसकी वजह से ही ये जो लत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर क्या मोबाइल एडिक्शन को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी माना जा सकता है?
1: हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जिसमें इसमें निमहांस ने, सर्विस फॉर हेल्दी यूज़र टेक्नोलॉजी क्लिनिक निमहांस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में, और इससे पाया गया है कि ये बहुत सारे युवकों में, एडोलेसेंट्स में और जो यंग अडल्ट हैं उनमें ये पाया जा रहा है। और हमने यहाँ पे भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है उसमें पाया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको उसको बताऊं, तो हमने कुछ रिसर्च करी है जिसमें कि कर्नाटका में ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की, उसमें पाया गया लगभग 2700 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हमने रिसर्च की गई थी। उसमें कुछ प्रेवलेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 29% को पाया गया कि वो माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन उनमें पाया गया, 16% लोगों को मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, और 0.5% लोगों को सीवियर इंटरनेट एडिक्शन पाया गया। और उसमें ये पाया गया कुछ रिस्क फैक्टर भी पाए गए कि तो इसमें ये पाया गया कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल यूथ है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, और जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, और जो कि लगभग 3 से ज़्यादा घंटे इंटरनेट का यूज़ या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं अपने आनंद लेने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, वो ज़्यादा रिस्क में हैं।
0: अच्छा।
1: और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया है कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था उन लोगों का ज़्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने के उनको ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शट क्लिनिक निमहन से 2015 में एक सर्वे हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे, रूरल एरियाज में, वहाँ किया था। और ये सर्वे 2,755 लोगों पे किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल। और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 1.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.1% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया, और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
0: अच्छा, तो क्या कहते हैं आपकी स्टडी की ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो कौन से स्टेज पे है हम अभी?
1: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सिवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है और सिवियर भी है।
0: अच्छा।
1: तो जो माइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 27 से 29% लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है, जो भी असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट हैं। तो अगर देखा जाए तो सब ज़्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में हैं। और इस चीज़ को अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया गया, विशेषज्ञों ने नहीं ध्यान दिया, और बाकी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स, घर पे पेरेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं। जिनको कि मॉडरेट या सीवियर नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो माइल्ड हैं वो हो सकता है कि हमारे पास ना भी पहुँचें, वो एक्सेस होगा, वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है और वो घर पर हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको तो जो माइल्ड है वो धीरे धीरे मॉडरेट बनेंगे, और जो मॉडरेट हैं वो धीरे धीरे सिवियर की तरफ जा सकते हैं।
0: करेक्ट। वो शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया, तो इसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
1: तो इसमें हमने ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती हैं, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा। एक बोलते हैं, इसे कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, इससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना।
0: अच्छा।
1: हो जाता है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल टिल्ट नहीं हुआ है, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगभग आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है। जैसी जैसी ये आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है, अगर वो 15 डिग्री होता है, तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है धरती की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा, ये 18 kg का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक, तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशनल पुल करता है। और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि आप पूरा अपने बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं अपने गेमिंग एक्टिविटी में, सोशल मीडिया में या कोई वेब सीरीज वॉचिंग में, तो जब ये 60 डिग्री टिल्ट होता है तो लगभग ये 27 kg का ग्रेविटेशनल पुल होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर ये लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा भी इस सिचुएशन में रहें और रोज लगभग, तो ये आपको कुछ समय बाद आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स लूज होने लग जाती हैं।
0: अच्छा।
1: और इसकी वजह से आपको पेन और ये नेक में स्पैजम रहता है। तो ये है टेक्स नेक सिंड्रोम। कुछ लोगों को जो जरूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं, उनके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम, जो जैसे कि जैसे पहले बोलते थे कि जो ज़्यादा टाइप करते हैं उनको होता है, अब जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर, थंब और जो सेकंड फिंगर है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ पर व्रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को ड्राई आइस की शिकायत होती है, क्योंकि उनकी आइस ड्राई हो जाती हैं, बिकॉज जो गेमिंग है और सोशल मीडिया है, ये आपकी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है आई मूवमेंट, ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपका एक मिनट में लगभग 20 से 30 बार ये आईज ब्लिंक होती हैं, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब रील्स देखते हैं आप एक के बाद एक, तो ये आईज बंद होने का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता.
0: करेक्ट.
1: तो जब वो नहीं होता है तो आपकी आईज ड्राई होने लग जाती हैं और वो वाटरी आईज बन जाती हैं. तो ये कुछ फिजिकल तकलीफें जो हो जाती हैं, कुछ मानसिक इनसे फिनोमिनाज भी निकल के आते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं नोमोफोबिया. नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया. वो तब होता है जब आप अपने एक ऐसा डर, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ समय दूर रहें तो आप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग जाता है. तो रिसर्च ने पाया गया है कि ज़्यादातर ये सभी लोगों में पाया जाता है. और हमें सोचना है कि रिसर्चर्स ने ही बताया कि ज़्यादातर 72% प्रतिशत लोग जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं. तो ये इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया. ये किसी की वजह से भी हो सकता है. और कुछ इसमें इंडिया में पब्लिश्ड आंकड़े भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आंकड़े देखा जाए तो माइल्ड नोमोफोबिया 41% लोगों में पाया गया, मॉडरेट 42% में, और सिवियर पाया गया है 15.2% लोगों में, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में 18 to 24 ईयर्स के बीच में.
0: अच्छा.
1: तो इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया. और एक फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फोमो. आपको पता होगा फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या और जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपसे वो बहुत ही जो फिनोमिना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो जो है टच चला जाएगा. इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये एक मानसिक फिनोमिना है और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं. इसके चलते ही लगभग 56% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम. लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाएगा.
0: बिल्कुल.
1: आखिरी बार हम खुद ही सभी श्रोता सोच सकते हैं, आखिरी बार आप जब आप नहीं सो रहे हो तब आप ऐसा कोई टाइम बताइए जब 2 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहे हो जगते हुए समय.
0: करेक्ट ना.
1: तो ये है नेक्स्ट फिनोमिना, इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम. फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसा फिनोमिना होता है जब आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या फिर आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो ना तो फोन आ रहा होता है, ना तो बज रहा होता है वो, और ना ही वो वाइब्रेट कर रहा होता है. तो इसको बुलाता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम. तो ये हफ्ते में एक आध बार अगर हो जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में. लेकिन अगर ये 2 या 3 बार हो जाए हफ्ते में, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक लक्षण है, ये फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आपको, जो हमने शुरू में 8 चीजें बात करी थी वो क्राइटेरिया, आपको ये एडिक्शन हो सकता है. एक और एक फिनोमिना इसे बोलते हैं फबिंग. हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ. फबिंग इसे बोलते हैं कि जब आप किसी से दूसरे से, कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो, मैं सुन रहा हूँ. वो अपना मोबाइल फोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है. तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई इसमें हार्म नहीं हो रहा है. लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे 4 फंडामेंटल नीड्स, जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, वो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में. क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में. और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है ये इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है. और धीरे धीरे फिर वो रिश्ते में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं.
0: अच्छा.
1: तो इसको बोलते हैं फबिंग. ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये मानसिक फिनोमिनाज जो हैं, ये धीरे धीरे मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं. तो इसको, इन सब फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये मानसिक जो फिनोमिनाज हैं, इनको अगर हम नज़र में रखें तो ये वाकई में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इसे एक मानसिक रोग माना जा सकता है.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने. पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
1: हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया है कि प्री ऑक्यूपेशन. वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे ही उनको टाइम मिले एकदम तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आके बैठ जाएं. सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगा हुआ है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहाँ मन लगता है. उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है. हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेलने जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है, अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी है वो खा सकते थे. हो सकता है कुछ और शैतानी कर सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं. वो कहाँ मिलेंगे, वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ आधे घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन को छोड़ देते थे, अब वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से लिया ना जाए उनके, तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया। तीसरा इनका सिम्टम है कि अब जो है उनको, अगर आप उनसे ले लेते हैं फ़ोन तो उनका मूड जो है ख़राब हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है उनको, और फिर वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बिना मोबाइल फ़ोन के। चौथी चीज़ है कि ये भी देखा गया है कि उनको जब भी वो आपके साथ पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो जाए, अनबन हो जाए, या घर में कोई और बात हो जाए और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो अपना मूड सही करने के लिए बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर फ़ोन दो, मुझे थोड़ी देर फ़ोन देखना है। जब माँ पूछते हैं क्यों देखना है, तो कहते हैं नहीं मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन देखने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज़ है कि जब उनसे ये, और जब भी देखा जाए कि अगर उनसे बोला जाए कि अभी आधा घंटा हो गया है, अभी से बंद करके आ जाओ, तो उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग, खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद से बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा, तो डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल। तो ये सब अगर लक्षण उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा कि उनको अब मन नहीं करता है बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता अब दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बटाने का, उनको लगता है वो टाइम जो मुझे मिला है फ्री, वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर दूं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, इनमें से अगर 8 लक्षण बताए थे, इनमें से अगर 5 भी हैं, तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क पे हैं, उनको सहायता की जरूरत है।
0: अच्छा, तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हम?
1: ओके, तो इन पे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है, लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है लेकिन उसको यूज़ कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम युवकों को और जो एडोलेसेंट्स हैं इस उम्र में, उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फ़ोन बास्केट स्किल।
0: अच्छा।
1: उसमें जब ये फैमिली मेम्बर्स को भी बताना पड़ता है, ज़रूरी है कि सभी जो फैमिली हैं इंक्लूडिंग युवक जो हैं उसमें, वो शाम को हमें एक टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे या हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय, लगभग उस टाइम पे सारे जो अपने फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डाल देना है। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
0: अच्छा।
1: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है, चाहे वो 8 बजे हो, चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज में बिताना है।
0: अच्छा।
1: तो ये इसे बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सेकेंड होता है कि अपने सेम शाम के समय या पूरे दिन आप कोशिश करनी कि अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस। मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है इन अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें। ये काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: तो कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फ़ोन, अगर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का है उसमें लिखना पड़ेगा आपको, अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं जो है अपना मोबाइल फ़ोन मैसेजेस के लिए इस समय देखूंगा। 3 घंटे अगर ज़्यादा लगता है 2 घंटे, तो अगर किसी को उससे ज़्यादा तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो है, तो अगर बहुत ज़्यादा तुरंत चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो कृपया कॉल करें, जिससे कि आप फ्री हो जाएं। नहीं तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप दूसरों से बात करें तो मोबाइल फ़ोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं, और इनसे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले खुशी मिला करती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आपको ये लगने लगा है सबको जो भी इस्तेमाल करते हैं फ़ोन कि ये स्मार्टफोन से ज़्यादा खुशी मिलती है, स्मार्टफोन से यूज़ करने ज़्यादा आनंद मिलता है, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए। और एक स्किल है, उसे बोलते हैं नो फोन जोन्स। घर में जो है पेरेंट्स को और युवकों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है, वहाँ पे फ़ोन किसी का भी नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको नो फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी है, हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
0: अच्छा।
1: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन ये कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ है, हमने देखा है अपने योकोमो में, हमने हमारे क्लिनिक में, वो आधे दिन सुबह उठते हैं लगभग जब भी 9 बजे या 7 बजे उठते हैं, वहाँ से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से भी फास्टिंग करना, तो अच्छी बात है। देखिए कि कितने देर तक आप जा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ है या स्मार्टफोन एडिक्शन है, इससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये कुछ हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, और इस समय लर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लर्न करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह से इसके न्यू एप्लीकेशंस और फीचर्स आ रहे हैं, ये आपको यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज़ कर रहे, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM के LE कनसु, और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की, और ये जो मोबाइल एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है, और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
1: जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
0: अच्छा,
1: जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है, उसमें हमें कुछ समय तक, हमें पहले से निर्धारित करें कि हमें कितने समय तक इसका यूज नहीं करना है, और उसको हमें उससे दूर रहना है। तो मिनिमम जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ता है 3 घंटे से डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को। डिटॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा, और उस टाइम पे हम जो भी अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य हैं वो करने हैं, वो सारे हमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, और मैं कुछ स्टडीज़ के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। ये जो स्टडीज़ की गई हैं, ये बाकी बहुत सारे देशों में की गई हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, UK और साउथ कोरिया में ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को, और कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज़ नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है, मतलब जितने समय तक आप यूज़ करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो 6 स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया, और 6 की 6 में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फ़ोन जो होता है, हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है। हमारा खुद पे, हमारा खुद मनोबल पे खुद रेगुलेट करना चीज़ों को बहुत पुअर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है, वो 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया, और उन्हें पाया गया कि 1 स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। तीसरी चीज़ जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं कि इसे बाद में करेंगे, ये इसी की वजह से होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन पाया गया, 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया, और दोनों की दोनों में ये बेहतर हो गया। चौथा जो था स्लीप, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी जो है स्लीप जो है वो बेहतर हो गई, उन्होंने 1 स्टडी में पाया गया कि ये बेहतर हो गई। ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पाया गया, 8 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया था, और उन्हें 4 में से 8 में ये पाया गया कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ से, वो बेहतर हो गया जब उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो ये सब चीज़ों से करने से ये पाया गया है कि आपके जो बाकी चीज़ों में जो डिफ़िकल्टी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कि कुछ निर्धारित समय के लिए आप जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल फास्टिंग से, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम 3 घंटे स्टार्ट होता है, और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी, जिनको माइल्ड है, वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
0: अच्छा।
1: जो मॉडरेट सिवेरिटी के लोग हैं, जिनको लगता है कि उनमें ज़्यादा है, अगर कोई भी 3 घंटे से अराउंड कर रहा है तो उसे माइल्ड कैटेगरी माना जाएगा। जो 3 से 6 घंटे यूज़ करता है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए, उसको मॉडरेट कैटेगरी मान सकते हैं। जो 6 घंटे से ज़्यादा या 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए, वो सीवियर कैटेगरी में लगभग आ रहा है, तो उसको जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है, कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, और बाकी जो चीज़ें जिनमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम यहीं से निकाल के आपने मोबाइल फोन को दिया है. और अगर आप इन एक्टिविटीज में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन सारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो, एकेडमिक वर्क में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर आपके कोई नए स्किल लर्निंग की एक्टिविटीज़ में हो. और हमने यही पाया गया है कि देखा गया रिसर्च में कि न्यू स्किल लर्निंग अब जो युवकों में धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि सारा समय जो फ्री समय मिलता था उन्हें वो अब स्मार्टफोन में जा रहा है.
0: करेक्ट सर. हम हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे, कुछ इजी टिप्स जिससे मोबाइल उपयोग का वो कम यूज़ करें?
1: ओके, सो इजी टिप्स में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि एक तो नो फोन जोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने घर में निर्धारित करें कि नो फोन जोन्स कौन सी हो सकती हैं. वो हर किसी के घर में अलग अलग हो सकती हैं, तो पहले नो फोन जोन डिसाइड कीजिए, जिससे कि आपको मोबाइल फोन यूज़ करने में रेगुलेशन आएगा. और ये हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एब्सटिनेंस नहीं कर सकते. एब्सटिनेंस मतलब पूरा इससे परहेज नहीं कर सकते हैं.
0: अच्छा.
1: हमको यूज तो करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें? तो पहला है कि नो फोन जोन्स अपने घर में निर्धारित करें, अपने लिए निर्धारित करें, जिससे कि आपका टेक्नोलॉजी पे यूज, जो टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेशन है वो बढ़े, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंज्यूम करे. दूसरा है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि अपने नोटिफिकेशन जो हैं कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें. तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है कि इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशंस देखेंगे नहीं. अच्छा. शाम में कुछ समय के बाद. चौथा है कि हमें, जैसे मैंने बताया फोन बास्केट का स्किल, तो शाम में अपना फोन जो है हमें एक बास्केट के अंदर डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, या कोई नया स्किल लर्न करना हो, या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना हो, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा. पांचवी चीज़, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखें और फिर बात करें. इससे आपके रिश्तों में जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो बेहतर होगा, और आपका रिश्ता भी घनिष्ठ बनेगा. नहीं तो वो धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और उसकी वजह से फिर आपका मन करता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन यूज़ करें. और एक और है कि डिजिटल फास्टिंग, जो बताया था मैंने कि डिजिटल फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने खुद पे नियंत्रण जो है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन, वो बेहतर हो जाएगा. तो हो सके तो अगर आप मिनिमम, या अगर आप एक घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम दो घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करें.
0: अच्छा.
1: कोशिश करें कि दो घंटा बिना मोबाइल फोन को यूज करें वे बिताना है आपको प्रतिदिन. धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें और फिर देखें उसको बढ़ाएं. तो अगर ये सारी एक्टिविटीज आप धीरे धीरे अपने दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में लाएंगे तो वो बेहतर होगा. और हाँ, रात को डिनर के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जब वो रात के में जब ये फोन हाथ में आ जाता है तो वो डिनर के बाद में वो कैसे दो घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है.
0: बिल्कुल.
1: और ये स्टडीज में पाया गया कि लगभग इंडिया में 60-90 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है. स्लीप स्टार्ट होने में डिले हो जाता है. तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं.
0: बिल्कुल. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का. सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना, मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है. और उसको लेके, मतलब मोबाइल का यूज़ जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है, उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर. और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच.
1: या थैंक यू.
0: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली वेणुधोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे. हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं. उसी के साथ साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है. ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। उनको हम सुन रहे थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु धोनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।
2: कितने

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वर। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि समर वेकेशंस चल रहे हैं और देखते देखते ये वेकेशंस खत्म भी हो जाएंगे, तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को थोड़ी इम्पोर्टेंस दे और थोड़ा सा क्वालिटी समय, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें, क्योंकि ये जो समर वेकेशन का पीरियड होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है सभी बच्चों के लिए। क्यों ना हो, हम भी जब छोटे थे तब पूरे साल बेसब्री से हम हमारे समर वेकेशंस का इंतजार करते थे और हमेशा ही हम ये सोच कर रखते थे कि वेकेशंस आएंगे तब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनके घर जाएंगे, उनको मिलने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये सारी एक्टिविटीज करेंगे। तो जब हमें इतना इंतजार हुआ करता था तो हमारे बच्चों को भी क्यों इनका इंतजार ना हो। तो उनका जो स्पेशल टाइम अभी चल रहा है उसे और स्पेशल बनाते हैं और कुछ एक्टिविटीज उनके साथ करेंगे, हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि वो अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसी विषय पर बात करेंगे, पर उससे पहले प्यारे प्यारे गाने सुन लीजिए। शुरू करती हूँ आज का शो और सुनाती हूँ शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, बी रिलैक्स में मैं आरजे स्वरा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम समर वेकेशन की अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही कोविड आकर गया, हमारे बच्चे बहुत ही डिजिटली एडवांस हो गए, ऑनलाइन स्कूल अटेंड करने लगे, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करने लगे और बहुत सारा काम उनका स्क्रीन के सामने होने लगा। इसी के साथ हमारे बच्चे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के भी आदि हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बुक्स को रीड करना और ऑडियो बुक्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियो बुक्स यानी किताबों को सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इस एडवांसमेंट की वजह से बुक या किताबें, फिजिकल किताबें पढ़ना कहीं कम हो गया है। तो अपने बच्चों को उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करें, उनके लिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से एक दो चार प्यारी प्यारी किताबें लेकर आए गिफ्ट के तौर पर, तो वो खुशी खुशी पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि गिफ्ट है वो मना नहीं करेंगे। और आप भी क्यों ना उनके साथ बुक्स पढ़ें। किताबों की तरफ उनका ध्यान फिर से केंद्रित करने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे। आगे बढ़ते हैं शो में और लेती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

कोविड का और लॉकडाउन का और एक फायदा हमको हुआ कि हम फैमिली मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। हम बहुत सारे इंडोर गेम्स जो हम हमारे बचपन में खेला करते थे, जिनको हमने बहुत सालों से बंद करके किसी कोने में अलमारी में रख दिया था, उनको हमने सब बाहर निकाला और फिर से हम बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स खेलने लगे अपनी फैमिली के साथ। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, हमने वो फैमिली टाइम स्पेंड करना कम कर दिया है। तो क्यों ना वो फैमिली टाइम हम फिर से स्पेंड करें, फिर से रिलीव करें और अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स एंजॉय करें। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो हमने एक कोने में फिर से दबा दिए थे वो सारे बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स निकालने हैं और अपने बच्चों के साथ एक समय फिक्स करके दिन में एक आध घंटा खेल लेना है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। अगर आपको लाइट हल्के फुल्के गेम खेलने हो तो सांप सीढ़ी और उस लूडो जैसे गेम्स आप खेल सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना हो तो बिजनेस गेम मोनोपोली खेल सकते हैं। उससे भी ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग बनाना हो तो चेस खेल सकते हैं। और उसके अलावा भी कार्ड्स है, ऊनो है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये सारे गेम्स एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। फिलहाल शो में आगे बढ़ती हूँ, हम मिलते हैं कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM।

बी रिलैक्स में आरजे स्वरा आपका फिर से स्वागत करती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो बी रिलैक्स। वेकेशंस में अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करें इसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। तो हमें ना नई नई स्किल्स सीखनी है, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, क्ले आर्ट है, या ऐसी कोई चीज जो आपके बच्चों के इंटरेस्ट की हो, उसे इनकरेज करना है कि वो स्किल वो सीखे। उसके लिए वो उसके क्लासेस ढूंढिए। अगर क्लासेस आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन भी आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसे मोटिवेट कीजिए, हो सके तो आप भी उसके साथ क्लास अटेंड कीजिए और साथ में सीखिए। देखो, अपने बच्चों के साथ कोई क्लासरूम शेयर करना ये एक बहुत अलग अनुभव होता है, क्योंकि उसकी और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, उसके और आपके लर्निंग कैपेसिटीज में बहुत सारे डिफरेंस है। पर जब आप दोनों मिलकर कोई चीज साथ में सीखोगे तो आप एक दूसरे को और ज्यादा कोऑपरेट करोगे। जब आपको पता है कि ये आपका बच्चा इस चीज में कमजोर है तो आप उसे सिखाओगे कि इसे बेहतर कैसे बनाते हैं, और जब आपका बच्चा देखता है कि उसके माता पिता किस चीज में कम पड़ रहे हैं तो वो अपने माता पिता को भी मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है और सिखाता है, तो इससे भी आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। एक्चुअल में ये तो समर वेकेशन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं और अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम, हॉलिडे टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप फटाफट उनको सुनकर लौट कर आइए। मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा, और आप सुन रहे हैं बी रिलैक्स ओनली ऑन KLE वेणुध्वनि।

पूरे साल के दौरान आप अपने बच्चों के साथ बाहर कम जाते हैं, क्योंकि या तो आपके काम होते हैं या फिर फेस्टिवल्स आते हैं या फिर बच्चों की एग्जाम्स होती है। ऐसा कम मौका होता है जहाँ पर आपका और आपके बच्चों का शेड्यूल मैच हो जाए और सबको एक साथ में छुट्टी मिले और आप कहीं घूमने जा सके। पर समर वेकेशंस में बच्चों के पास कम से कम महीना डेढ़ महीना तो टाइम होता ही है कि वो फ्री है, तो अपनी छुट्टियां देखें। आप लॉन्ग वीकेंड अगर आ रहा हो या दो तीन दिन की छुट्टी आप निकाल सको तो एक अच्छा सा मिनी वेकेशन, या अगर ज्यादा वक्त निकाल सको तो लंबा वेकेशन भी लीजिए और फैमिली मिलके कहीं अपने घर से बाहर, शहर से बाहर जाएं, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करें। जब हम हमारी रूटीन सेट ऑफ लाइफ से बाहर निकलते हैं तब हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है और अपने रूटीन में वापस जाके बहुत मेहनत करने के लिए ताकत मिलती है। तो ये जो ब्रेक है ना, वो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। वेकेशन लेने का आपको खुद को भी फायदा होगा, आपके बच्चों को भी फायदा होगा और आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। भाई फायदे ही फायदे है, बस एक ही नुकसान है कि खर्चा होता है। तो उसके लिए पूरे साल में अच्छे से प्लान करके अपने वेकेशन के लिए एक बजट तैयार कीजिए ताकि आपको वो खर्चे की चिंता ना करनी पड़े। फिलहाल मैं आपके एंटरटेनमेंट की चिंता करते हुए आपको कुछ गाने सुना रही हूँ। आप लौट कर आइए, यहीं पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।

0: कई बार ऐसा होता है कि आजकल की फैमिलीज में आप पेरेंट्स अपने अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, कोई आउटिंग्स प्लान करते हैं, और बच्चे अपने हिसाब से अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं। पर क्यों ना ऐसा किया जाए कि बड़े और बच्चे दोनों मिलकर कहीं मिलने का प्लान करें। आपके कोई ना कोई ऐसे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही जिनके बच्चे भी आपके बच्चों के फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के साथ जब आप बाहर जाते हैं तब आप फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ 2-in-1 टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ऐसा प्लान कीजिए ताकि वो अपने फ्रेंड्स और अपने कजिन्स अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अगर आप बिजी है तो बच्चों को भेज दीजिए, पर सबसे मिलना जुलना, बातें करना, अपनी बॉन्ड बढ़ाना ये बेहद जरूरी है। सोशलाइज करना सिखाना अपने बच्चों को बहुत जरूरी है। तो प्लान to meet all your friends and family and cousins in this vacation. सुनते रहिए KLE विनुद्वनि 90.4 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। आप सुन रहे हैं Be Relax only on KLE विनुद्वनि।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली।

0: हमको लेने नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

इन समर वेकेशंस में अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना मत भूलना। ये लाइफ स्किल्स बच्चों को स्कूल में भी सिखाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो आप स्कूल में नहीं सिखा सकते।

समझो आपके स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है तो बच्चे स्विमिंग करना नहीं सीखेंगे, और स्विमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। इसी के साथ खाना पकाना, कुकिंग, बेसिक कुकिंग हर एक इंसान को आनी चाहिए। तो इस वेकेशन में अपने बच्चों के साथ फैमिली कुकिंग टाइम को एंजॉय कीजिए और उनको कुकिंग सिखाइए। इसी की तरह बहुत सारी और लाइफ स्किल्स है जो सीखना बेहद जरूरी है, तो उसके लिए वक्त निकालिए और अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। नई आदतें लगाना बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे अपने स्कूल के रूटीन में जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का, होमवर्क का, दूसरे क्लास और एक्टिविटीज का प्रेशर होता है, एग्जाम्स का प्रेशर होता है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर होता है। तो इस समय में जब स्कूल शुरू होती है तब आप कोई आदत नहीं डाल सकते, उनका शेड्यूल आप चेंज नहीं कर सकते। पर अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक हैबिट है जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में हो, तो ये बिल्कुल सही समय है समर वेकेशन का, जिसमें आप नई आदतें अपने बच्चों को लगा सकते हैं या कम से कम उनको पुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो नई आदतें अपनी लाइफ में ले। और जब उसकी शुरुआत होगी समर वेकेशन में तो उनके पास काफी समय होगा, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वही आदतें अपनी स्कूल लाइफ में भी वो कैरी कर सकते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में भी उसे वो अपना सकते हैं। तो अगर कोई नई आदत लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है समर वेकेशन का।

अपने बच्चों की जो वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास अभी काफी समय है, तो इस समय का उपयोग कीजिए और वो जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए। एक चीज याद रखना, अपने बच्चे को बिल्कुल समझा बुझा के, बहला फुसला के अच्छी तरीके से हैंडल करना सीखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के तुम इस चीज में कमजोर हो, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करो, ऐसा अगर चिल्लाओगे तो वो काम नहीं करेगा। यू शुड नॉट हाईलाइट दैट इट्स हीज और हर वीकनेस, यू शुड हाईलाइट दैट इट्स आर वीकनेस। ये हमारी कमजोरी है, पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की मिलकर ये कमजोरी है और इसके ऊपर हमें काम करना है मिलकर। जब आप सिर्फ हाईलाइट करोगे कि तुम्हारे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें टेबल्स नहीं आते तुम टेबल्स लर्न करो, तो वो बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगा और उसे कुछ भी करने का मन नहीं होगा और वो आपसे दूर होने लगेगा। पर अगर आप ऐसा कहोगे कि चलो ना यार हमारे टेबल्स अच्छे नहीं है, हम दोनों मिलकर टेबल्स लर्न करेंगे, तो वो बच्चा खुशी खुशी आपके साथ टेबल्स लर्न करेगा। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमजोरी है, उसे सिर्फ उसकी कमजोरी है ऐसा हाईलाइट मत करना, उसको एक फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली वीकनेस की तरह रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश अगर करोगे तो वो अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपको आपकी कोई वीकनेसेस पे काम करना है तो आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। किड्स आर अ वेरी गुड टीचर। कभी ट्राई करके देखना, अपने बच्चों से कुछ सीखने की कोशिश करना। वो यू नो एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको वो पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे और उसका मजा ही कुछ और होता है।

इस समर वेकेशन में अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाइए जो स्कूल में रेगुलर लाइफ में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में कॉमन एक्टिविटीज होती है, ड्राइंग होता है, आर्ट एक्टिविटीज होती है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। उसके अलावा जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग भी शायद कुछ स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर यू नो कम्युनिकेशन एंड मीडिया है या फिर मार्शल आर्ट्स है या ऐसी कोई स्किल्स जो रेगुलर उसके स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वैसी स्किल्स आप समर वेकेशंस में सिखाइए। जो कॉमन स्किल्स है जो हमेशा ही स्कूल में सिखाई जाती है, वही अगर आप समर में सिखाओगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल में भी सीख ही रहा है। तो ऐसा कुछ सिखाओ जिससे उसे कुछ नया सीखने को मिले, और नई चीजें ना बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है। वैसे समर वेकेशन में करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारे जमाने में तो हम आम तोड़ा करते थे, हमारे जमाने में तो हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। सिर्फ इतनी स्टोरीज बोलोगे तो उतना काफी नहीं है, आपको खुद को पार्टिसिपेट करके अपने बच्चों के साथ समर वेकेशंस को फ्रूटफुल बनाना है, एंजॉयबल बनाना है और मेमोरेबल बनाना है। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और इस समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

गुड इवनिंग दोस्तों, आप ट्यून है वेणु धोनी 90.4 के LE कनसू पे और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चले, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात और इस सफर की शुरुआत करेंगे हम इस खूबसूरत नगमे के साथ जो मुझे भी बेहद पसंद है और वो है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे।

यादों की बारात में अगला बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में ये सॉन्ग आपके लिए, जो है महबूब की मेहंदी मूवी से। ये मूवी आई थी 1971 में।

90.4 वेणु धोनी के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मनीष आपके साथ है। रात का समा झूमे चंद्रमा, ये गाना हम अभी सुनने जा रहे हैं जो आशा पारेख के ऊपर फिल्माया गया है। लता मंगेशकर जी की आवाज में जिद्दी मूवी का ये सॉन्ग, जो मूवी आई थी 1964 में। तो चलिए सुनते हैं रात का समा।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जो है ओ सनम तेरे हो गए हम। आई मिलन की बेला मूवी से ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1964 में। म्यूजिक है शंकर जयकिशन जी का और गाने को लिखा है शैलेंद्र ने। तो चलिए सुनते ओ सनम तेरे हो गए हम।

अगला बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है वादिया मेरा दामन। अभिलाषा मूवी से ये सॉन्ग है जो फिल्माया गया है नंदा और मीना कुमारी के ऊपर। आर डी बर्मन जी का म्यूजिक है, तो चलिए सुनते हैं वादिया मेरा दामन।

यादों की बारात में अगला बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। जब प्यार किसी से होता है मूवी का ये सॉन्ग है, जो मूवी आई थी 1961 में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में। अगला गीत आपके लिए, आप सुनते रहे 90.4 KLE कनस।

यादों की बारात में आखिरी गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है ये समा है ये प्यार का। जब जब फूल खिले मूवी से ये सॉन्ग है, जो फिल्माया गया है शशि कपूर और नंदा के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: रे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूर्णधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 की LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।